तो तन त्यागते ही सुन रहे जब प्रेत बखान त्रिया पै जाए पुत्र पिलित्र सुमित्र सखाए बेगन कार आए सदा है पौन पंडार तरे गर जे तक शागत प्राण बगान कहे है चेत रे चेत चेत महापशु अंत की बारी अकेले ही जाए दसवें पिता कहू देश को मानते हैं तो कहू में ऐश को ऐसे बता है कोई कहे विष्णु विष्णायक जाए पजे अग्यो कटे है बारह हजार विचार अरे जब अंत समय सब ही तय जय है ताही को ध्यान पर मानिए जो था अब है अब आगे हुआ है उस परमात्मा का ध्यान करो जेरा आद सच जुगाद सच है भी सच नान खुशी भी सच आद पूरन मध पूरन अंत पूरन परमेश्वर है आद मध अंत पर सोई और न कोई दिखा लिए जियो वो जरा ऐसा परमात्मा है सचिदानंद शुद्ध उस अंतर जामी परमात्मा ने सब वेद ग्रंथ कथन कर दिया और जिन्हें उपता ऋषि मुनि उन्हें कथन कर दिया कि उस परमात्मा की प्राप्ति करो वो परमात्मा कैसा है वो कैसा परमात्मा देखो गुरु नानक देव महाराज का ध्यान सारिया पे पहला एक आ सारे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी से पहला एक आ जग जी साहब से पहला एक आ एक का की मतलब है एक परमात्मा आ सारा सारी दुनिया के आकार नाम दे स्वरूप है नाम ओंकार का स्वरूप है ओंकार एक का स्वरूप है सारा प्रपंच एक का स्वरूप है एक सारा प्रपंच निकलता एक ही रूप है एक विच सारा प्रपंच मिलता जैसे वेखो एक दो एक बना लो तो तीन दो होगा ते तीन एक होगा तीन होगा चार एक बनाओ चार होगा भी एक भी सौ एक का सौ हो गया दो हजार एक का दो हजार हो गया देखो जिन्ने एक उन्ने गह हिंसे हो जाएंगे पर वो जिन्ने हिंसे है पचास हिंसे है या सौ हिंसा हैगा वो एक ते बिना है एक ते बिना कोई हिंसा हैगा एक ही सारे हिंसा का रूप है जिन्ने हिंसे एक का रूप है एक हिंसा का रूप है जिदा जल तरंग का रूप है तरंग जल का रूप है सोना भूषण का रूप है भूषण सोने का रूप है मृत का घट का रूप है घट मृत का रूप है सारा प्रपंच एक का रूप एक परमात्मा का रूप है एक का रूप है एक संसार का रूप है इसके बीच में खुद दशमेश पिता की उपासना गुरु साहब आनंद प्रसाद के बीच में दस दे जैसे एक वागते कनुका को तो आगे उठे न्यारे अन्याय हुए कि फिर आगम में लाएंगे जैसे एक तूर थे अनेक तूर पूर्त है तूर के कनुका सब तूर ही समाएंगे जैसे एक नर ते तरंग कोट उपजित है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे तैसे भी स्वरूप थे अभूत भूत प्रगट हुए ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे दसवें महाराज सिखा नु दस दे पाई उस एक सारा ब्रह्मांड पैदा होंगे एक रूप है एक ही नाले मिलता एक नाम किसका है ब्रह्म का क्यों गोरख ते सिद्धा ने गुरु नानक देव महाराज ने पूछा आपका क्या मत है आपका कौन सा रास्ता है आप की उपदेश करते हैं महाराज कहते एक परमेश्वर की पूजा करनी एक अकाल पुरख नु मनना जेरा सब का अधिष्ठान है जेरा सब का आसरा है जेरा चक्कर चेहनर बन जादल पात नहीं जे रूप रंग को कहना सख्त ऐसा जो परमात्मा है बरनो चेनो बारा नानी का पाश अदिव से सहारा ये अखर खर जाएंगे वो अखर में नहीं ऐसा जो अद्वैत परमात्मा है जिसके बीच में सजाति विजाति सुगत पेर नहीं है जिसके बीच में देश काल वस्तु परिशेर नहीं है जेरा नाम रूप से रहते है जेरा थापियो न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए ऐसा जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति इस जीव नू करोने वास्ते साडा अवतार हैगा असि उस परमेश्वर का उपदेश करते हैं होर किसी वस्तु का असि संसार के बीच में उपदेश नहीं करते हैं जेरा निरपौ ते निर्वैर है निरपौ ते निर्वैर ये दो विशेषण वो इत कटते हैं ये परमात्मा का स्वरूप लक्षण है जेरा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर परमात्मा का स्वरूप लक्षण है इसका असली स्वरूप ही समझ लेना इसे वक्र ही नहीं आ गया इस करके इसका जाप करने से तू तू करता तू हुआ मुझे मैं रहा न हूं जब आपका पर का मिट गया जब देखा तब तो जिन्हें अवतार ऋषि मुनि है दशे गुरु है दरबार साहब की वाणी है वेद है ग्रंथ है विशिष्ट आदि ऋषि मुनि है कबीर नाम दे भगत है ये सारे परमात्मा के प्रसंग आते हैं परमेश्वर नु कथन करते हैं भाई तुसी उस परमेश्वर की प्राप्ति करो ये जीव अपनी उत्पत्ति से पहले उस परमेश्वर का रूप

तू उतना चिर ही सुखी वस सकेंगी जितना चिर जीव आत्मा तेरा साथी तेरे नाल है। जदों तेरा साथी

एकायत जितना चिर तेरा खसम जीव आत्मा तेरे घर विच वसदा है सारे लोकी तेनु जी जी आखदे हन सारे तेरा आदर सत्कार करदे हन पर सह फरमाउंदे हन हे काया हे जिंदे जदों तेरा निमाणा कंत जीव आत्मा उठ के तुर पवेगा तदो कोई भी तेरी बात नहीं पूछेगा जो साहेब अपनी वाणी द्वारा प्रमाण कर रहे हैं।

जितना चिर तू पेके घर विच भाव इस संसार विच जितना चिर तू पेके घर विच रह के उस खसम प्रभु दा सिमरन करेंगी तद ही सौरे घर विच परलोक विच जाके तू सुखी वसेंगी। जो साहिब अपनी बाणी द्वारा प्रमाण कर रहे हैं।

जीवन चज सिख चंगा आचरण बनाने वाला चंगा चज सिख हे जी तेन कदे भी दुख

सतगुरु रायपुर विच आए चरण पाए बेंत संगतां ने दर्शन कीते बख्शा हासिल कीतियां ता इन्हां दोनां नूं पता लगा सोना ते मोहना के साहिब कलगीधर पातशाह इत्थे आए हन चरण पाए हन क्यों ना असीं वी चल के दीदार करिए। मन विच उबाल उठिया दोनों पचे के चल के साहिबां दे दीदार करिए। पर जिस वक्त साहिबां दे दीदार करन आए पर साहिब अगे नहीं हन दर्शन नहीं होए ता फिर कन्ना विच ओ आवाज पई कि ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता जिस वक्त सह वापस जान लगे ता ए दोनों जने अद्धा कु मील अगे जाके खलो गए कि एथों दी साहिब लंघन गए ता असी दर्शन कर लवांगे। पर संगत ता उस रस्ते तो लंघी पर सतगुरां ने अपना घोड़ा मोड़ लिया खेतों ने रस्ते दी लंघ गए ता फिर कन्ना विच ए आवाज गूंजी ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता हुण इन्हां दे मन विच ए निश्चा हो गया कि सचमुच सतगुर दर्शन नहीं देने ता दर्शना दी होर लालसा वधी मन विराग विच आ गया ता अरदास कीती पातशाह एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकदे कृपा करो एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकदे एक पल जुगां दे समान बीत रहा है जो सहबी अपनी बाणी द्वारा प्रमाण कर

छाए छुट्टड़ होई मक्खन लया विरोल कै छाए छुट्टड़ होई पीड़ लई रस गन्ने छिलछु है न कोई रंग मजीठो निकले अड लहे न सोई वास लई फुलवाड़ियों फिर मिले न टोई काया हंस विछुन्या तिसको न सथोई

हलत मन सुगावे। ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे। जू चक चूंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे। जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे। वंश कपूत कुलछना छड़ियां बने न विच समावे।

जैसे घाव घायल कै जतन कै निको होत, पीर मिट जाए लेक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै निको होत, पीर मिट जाए लेक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत, नांगो तो न होए तो ठेगरी परेखी है।

वंशघात अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास ध्रोई आकृत घन पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन

कपूर न चखई, दुर्गंध सुखावे काओ कपूर न चखई, दुर्गंध सुखावे हाथी नीर न वालिए, सिर छार उड़ावे तुम्हें अमृत सिंजिए, कुड़त न जावे सिमल रुख सरेविए, फल हाथ न आवे निंदक नाम भी होने सत्संग न पावे, मूर्ख सच न जाननी निंदक

कर दे परवासा थल विच तपन पठिया क्यों लह प्यासा सोने राज कमाई है कर भोग बिलासा।

लड़न दी समर्था रखन लग पे। ए गुरु जी ने मौजजा दिखाया, करिश्मा दिखाया कि खंडे बाटे दी पहल दे के ऐसी रूह फूक दित्ती कि मौत दा कोई डर नहीं, किसे जरवाने दा

जे कोई मुसलमान नहीं बनता उसनू मौत दे घाट उतार दी। ए दुखी होए सहायता लैण वास्ते आए, बेनती करन आए ने कि साड़ी रख्या करो।

सिर तां कटवा दिता, पर उसका हाथ फड़िया सी जेड़ा, वो मुड़ के किसे भी हिंदू दे मत्थे तो तिलक ना पहुंच सकिया। ताई फिर दसवें पातशाह ने अपनी बाणी विच भी आख्या सी ना,

पवित्र खून, ओ पवित्र केसर मथे ते लगा दिता, जिसनू कोई मुड़के पूंज नहीं सकया। ए कुर्बानी है।

इधर माता तृप्ता जी अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजी ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी रा पए देखते और एक पासे भाई अजय राम जी और एक पासे रायपुर की तलवंडी का राजा राय बुलार और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी में मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया है। मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदिया होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े होए और सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखल होए और आंदिया धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई, सत करतार, इस सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे। धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए, गुरु होण दा मन विच गुमान नहीं, अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया। जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओह धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए, कंड ते हाथ फेरे है, अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई, बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे आ, तैनू बड़ा मैं झिड़किया, तैनू मैं एक बारी चपेड़ा भी मारी है, पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया, कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल। धन गुरु नानक साहब माता तृप्ता जी दे कोल आए, मंजी ते कोल बैठे ते की देखते ने, माता जी दी अखां बंद ने, हाथां विच चोला है। आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पाला है, आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया, लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलिया, सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग, घुट के छाती ना लाया, अथरू किधे रुकन। कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्मदिन ते चोला सी के रखदी है। ते साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच एक खबर सारे शहर विच फैल गई, संगतां शहर दे वासी और ओ प्यारे जड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए। ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लें मैं फिर मिलांगी।

जद इतने बचन कहे भैन जी ऐ बेबे नानकी तुसी वड्डे हो तुसी मेरे पैरां ते मत्था टेको ते नहीं हो सकदा। साध संगत एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ते वखरी गल है। इन्हां गल्लां नूं कोई मन्ने भावे ना मन्ने पर सुख तां मनण विच ही है। हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं किहा मरदाने आ हुण तुसी जा के भाई अजय राम जी नूं लै के आओ। शहर वासियां नूं पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाने का सुभाग प्राप्त हो रहा है। पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पुछदे ने बेटा किथे चले। साहब जी कहन लगे मरदाना भाई अजय राम नूं वैराग विच उठा नहीं सके। धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन। अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो। धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ए प्यार भागा नाल मिलता है और इस प्यार नूं ओही जानता है जिसने ये प्यार किया। भगत कबीर जी कहंदे ने सो कत जाने पीर पराई जां के अंतर दर्द ना पाई। भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए एको ही गल नजर आती। भगत रविदास वह भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब जी कहंदे ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले तीर कि प्रेमा भगती दे तीर जेड़े ने जिन्हों लग जा जिन्हों तीर लगते ने उही जाने

हे निरंकार, हे वाहिगुरु, हे अकाल पुरख, तू सारियां ते मेर कर, सारी सृष्टि ते मेर कर। तू मालक है, तू प्रतिपालक है, तू राखा है सबे जी समा, तू सारियां ते मेर कर। जो ईर्खा, द्वेष, वैर, विरोध जो मन च अग लगी हुई है दूर कर, सारे अनुसमत बख्श। जगत सड़ रहे है, अगां लगिया हुई ने, तू कृपा कर, तू मालक है सारिया ते कृपा कर। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित दुआरे उभरे जिते लेहो ओबा, तू सारिया ते मेर कर। सारे तेरे ने, तू सारिया की कृपा कर। ये अरदास है कि अन्न पानी मुछ उपाए, ये पदार्थ सारिया नू दे, सारिया की कृपा कर। दुख दलिद्र धन तर, सारिया का दुख दूर कर। दलिद्र ये सब दूर कर, तू सारिया ते मेहर कर, मेहर कर।

सेज अनेक सुख रस भोगन पूरे ग्रह सोहिन चंदन सुगंध ग्रह सोहिन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे।